यथा वारिवाह पुरा परिपूरेन्ति साकरं एवमेव इतोतिन्नं पेतानं उपकपति इच्छितं पतितं तुम्हं किपमेव समिच्यतो सभे पुरेन्तु संगपा जन थोपन रसो यथा मनी छोते रसो